इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है, मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। दोस्तों मैं हूं जॉक्सियस, यू सिटे हक टू द हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, धड़काते रहो।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम ब्रदर. आज का वेदर.
2: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट.
3: जी हाँ, कल के मुकाबले आज 5 डिग्री मौसम और गर्मी रहेगी कम. तारा रम पम पम. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बादल सूरज को ढकेंगे और दोपहर होते होते गर्ज बर्स की भी संभावना है. बस वो 2-4 दिन आ गए जब कश्मीरी एक दूसरे को फोन करते हैं या पर लोग रोद और अच्छा ब्यावा तो हूं किन क्या ना योर नस प्यो न योर छुदाम दम छो. सो दिस विल बी द टॉक ऑफ द टाउन.
2: रेडियो चिना, रेडियो रेडियो चिना, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
3: साथ ही साथ अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स स्ट्रांग पर ह्यूमिडिटी 65%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:24 पर, आज का सनसेट होगा 7:48 पर. रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉग ज़ूस. मेरी जान से रिएक्ट दिखाते रहो.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तभी व्हाट्सएप पर है। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक जो भी होता है वायरल। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं निमुड़ा निमुड़ा सॉन्ग की। अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्यों, क्योंकि क्लास फिफ्थ यानी शिक्षा पांच की एक किताब में ये जो सॉन्ग है गलती से प्रिंट होकर आ गया था। अब जहां बच्चे ढूंढ रहे थे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की किताब में पेज पेज पर दिखा निमुड़ा निमुड़ा गाना, तो उसके बाद जब बच्चे गाना गाने लगे तो टीचर और पेरेंट्स ने बोले ये निमुड़ा निमुड़ा क्या है, ये निमुड़ा निमुड़ा। और उसके बाद पता चला कि ये तो भैया एक टाइपिंग एरर है जिसके चलते पूरा गाना किताब में छप गया और ये जो छपा हुआ गाना है सबकी जुबान पर आकर फिर से दर गया। वैसे गाना तो है जबरदस्त, इस वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। जी हाँ, ऐश्वर्या की या सिज़लिंग लक्स के साथ साथ एक क्रिएटिव डांस आइटम निमुड़ा आप सभी सुनने वालों के लिए। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन जॉक्स के साथ मस्तार शोवाज़ अब मेरी जान धड़काते रहो।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, इट्स सैड नॉट टू लव बट इट्स मच सैडर नॉट टू बी एबल टू लव। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सही है मेरे यार।

0: Kom da, ja.
1: Juss. Juss.
2: हर दिल की धड़कन को धड़का रहे हैं आप और हम, जी हाँ, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर। 8899904904 जो आपके दिलों के कनेक्शन हमारे दिलों से जोड़ता है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही डीएम करना ना भूले इंस्टाग्राम पर, ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से मिलूंगा। जब भी हम लाइफ में लॉजिकल होकर बात करते हैं तो अक्सर देखा गया है, मैंने क्या था रिसर्च कहती है, कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हैं व्हेन वी क्रिटिकली लॉजिकली सी द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे लोग इमोशनल होकर कुछ फैसले ले लेते हैं जो उन पर भारी भी पड़ सकते हैं। ये नहीं कि इमोशंस गलत है, लेकिन सही मायनों में अगर हम देखें तो कभी कभी ये लॉजिकल और इमोशनल फाइट जो है एक इंसान को उलझा कर रख देती है। खैर, इमोशंस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लॉजिक्स की। व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक लॉजिक्स एंड लाइफ, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्या आप भी लॉजिकल हैं? क्या आप भी लॉजिक्स देखते हैं? जब आपसे कोई बात टियाने आता है या कोई भी सर्कमस्टेंस आपके अड़े आती है, क्या आप लॉजिकल होकर उसका सलूशन ढूंढते हैं या आप भी इमोशनल वॉरफेयर में जुट जाते हैं? क्या है आपकी वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी, जानी हमें आपको है बतानी। जी हाँ, 8899904904 याद रखिए। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज।
3: एक दिन मोहब्बत
2: हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनार सिटी हिट, मेरी जान दिल का तेरा।

0: Kom da, ja.
1: Tjus. Tjus.
2: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्त शो व्हाट्सएप, मैं हूं आपका साथी आरजे ज़ील्स। व्हाट्सएप शो में लॉजिक्स एंड रियल लाइफ आज का टॉपिक और इसके बारे में हो रही है बात। देखिए, अगर हम लॉजिकल टिप्स की बात करें, हर दिन आप अपने लॉजिक्स को कैसे इम्प्रूव एंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू नो। द 2 मिनट रूल, अगर कोई भी काम है जिसमें मैज थोड़ा सा टाइम लगेगा, यही 2-4 मिनट के करीब, तो लॉजिक्स कहते हैं उसे पहले निपटा लो ताकि वो बाद में बढ़ ना जाए। अवॉइड इमोशनल ड्रिवन कमिटमेंट। जब भी इंसान खुश होता है, इमोशनल होता है, तो अक्सर ऐसे ऐसे वादे कर देता है जो बाद में सोचते हुए भी इंसान की रूह थरथरा जाती है। सो वी खड़ा है अवॉइड दोज इमोशन ड्राइव कमिटमेंट। साथ ही अगर हम देखें तो लॉन्ग लिसन फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, सोशल मीडिया और जो रील्स वगैरह है, इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपका ब्रेन जो है जजमेंट्स को स्नैप कर पाए। वही अगर आप लॉन्ग डिबेट सुनते हैं या इन डेप्थ रीड करते हैं, तो आपकी लॉजिक्स की जो क्षमता है, लॉजिकली सोचने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग कुछ भी आइडिया बनाते हैं और उसे सक्सेसफुल करार देते हैं, जबकि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉल्सिफिकेशन। जी हाँ, आइडियाज जो हम बनाते हैं, उन आइडियाज को डिसअप्रूव करना और उनके काउंटर में एग्जांपल्स ढूंढना, दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड लॉजिक्स। और बहुत सारे लोग जो ये सोच कर चलते हैं कि भैया मैंने मेहनत की तो कामयाबी जरूर मिलेगी, तो यू नीड टू थिंक लॉजिकली। अगर आप ये सोचते हैं कि बड़े टाइम से किसी चीज पर काम कर रहा हूं तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं चलता। लॉजिक्स हमें बताते हैं कि जब हम मेहनत और दिमागदारी के साथ कोई काम करते हैं, देन देयर आर चांस इट विल बी सक्सेसफुल, नहीं तो जादू ही ढूंढते रह जाओगे। और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM, बात हो रही है लाइफ एंड लॉजिक्स की। Logics and Life, आज का टॉपिक, stay hooked to the hottest frequency। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, 8899-0404 is the number। मैं हूं जॉक्सिस, मेरी जान, धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोस्तों, हॉलिस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं जॉक्स। अगली पेशकश टिकटॉक सेंट बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड की खबरों के साथ साथ टेक वर्ल्ड की तड़कती फड़कती अपडेट। जरा सा इंतजार, देते रहे हैं प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार।

दोस्त रेडियो चुनाव 90.4 FM आप सुन रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में बॉलीवुड न्यूज़। बॉलीवुड न्यूज़ में ये आपको बताते हैं हाइला। जी हाँ, आमिर खान ने सरप्राइज कर दिया सबको। उन्होंने कर दी है ना अपनी वेडिंग। अब आमिर खान का लॉन्ग टर्म रिलेशन और पार्टनर गौरी स्प्राट और इनके साथ अपनी वेडिंग अनाउंस करके फैंस को दे दिया है हाइला, शॉक दे दिया शॉक। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, बातें और भी है, आप बने रहें, धड़काते रहें।

So friends, here comes the time that I should seek departure. मौज जसूस एंड माइज टाइम टू साइन ऑफ फॉर द डे. उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जरूर शो एंजॉय किया होगा. मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने वाली है और जदीवा शो चुनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट. Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, ta ta.

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 91.4 FM.

देखिए मैं आ चुकी हूँ आपके बुलाने पे, और इमरान हाशमी का भी कुछ ऐसा हाल है कि वो सोच रहे कि लोग बड़ा बुला रहे हैं, और 19 साल के बाद फाइनली वो आने वाले हैं। आ गई मैं तो फिलहाल आपके लिए, और बताऊंगी कि इमरान हाशमी कहाँ आने वाले हैं और क्या कुछ है ट्रेंडिंग, सब कुछ आप तक पहुंचेगा क्योंकि शो चुनौर बीट्स की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत में ही ढेर सारी बात है, थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा प्यार, क्योंकि प्यार है तो आप है तो हम हैं, साथ साथ है, और हम साथ साथ हैं तभी ये बनता है जो मेरी पूरी और वाइब और ड्राइव मिल जाती है। हम दीप, आप सुन रहे हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM। जल्दी से शो का से बन जाइए क्योंकि आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन।

Beats on repeat show Chunar Beats ab enjoy kar rahe on your radio Chunar 90.4 FM day sari baatein ho rahi hai masti mazak fun entertainment aur entertainment ke alawa day sari information aap tak pahunchti hai. हेलो नो, हमेशा की तरह आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है शो के लिए, क्योंकि अकेले मैं नहीं होती हूँ, आपकी बातें मैटर करती है. और देखिए, अकेले मैं करूँ बात तो मज़ा थोड़ी आएगा, मज़ा आता है. और हमेशा ऐसा सुनने को मुझे मिलता है कि आपकी तो हम सुनते हैं, हमारी कौन सुनेगा. अरे मैं

हैं, मैं तो हूँ यहाँ पर और मैं आपके लिए आती हूँ सुनने के लिए कि आपके हाल चाल कैसे और क्या चल रहा है। और सच में अगर कोई ऐसी बात है जो अपने मन में छुपाई है कि कोई क्या कैसे जज करेगा, तो जज करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। स्वीट्स और रिपीट तो है मेरे दोस्त, पर आपकी बातें भी मैटर करती है। जैसे मेरी बात ही उनके दिल में छुपाई कोई भी राज नहीं है आपसे छुपा, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई रोजी रोटी के साथ ये मेरा घर बन चुका है। और अगर मैं बात करती हूँ अपनी कोई दिल की बात, बड़ा कुछ भी हो मेरे दिल में दिमाग में, मैं चाहती हूँ कि आप सुने मेरी बात, तो वैसे ही मैं आप भी एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि दीपा मेरी बात सुनेंगे क्या। तो ज़रूर मैं सुन रही हूँ आपकी बातें और बराबर 2 बजे तक सुनोगे आपकी बात। तो अभी आपने क्या बनता है, शाबाश शाबाश फोन उठाए ना 0 आठ नंबर से कॉल करें बच्चे से थी, तो मैं आपकी बात सुनूंगी। बताइए मुझे कि मौसम के रिलेटेड या कोई अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस, शो पे बन जाइए हिस्सा। और नंबर का तो आपको भैया जी बताइए

ये आग दिलक चुकी है मौसम की वजह से और ठंडी ठंडी पवन का हर कोई इंतज़ार कर रहा है, बट फिलहाल के लिए वो ठंडी ठंडी पवन जो है कब चलेगी, कब बारिशें होंगी, ऐसे अभी प्रेडिक्शन तो है, बट बैक टू बैक सॉन्ग्स हम तक के और हम आपके लिए चलाएंगे।

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 पे वंदे सारी बातें हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड फॉर द श्री अमरनाथ यात्रा। हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो परमिट, उनको परमिशन नहीं दिया जाता है टू क्रॉस काजीगुंड उधमपुर, क्योंकि 7 PM तक स्पेशली दे आर नॉट परमिटेड टू क्रॉस उधमपुर आफ्टर 7 PM, यानी कि 7 बजे के बाद हैवी जो मोटर व्हीकल्स है उन्हें अलो नहीं किया जाता है। वेल, जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें अलो किया जाता है टिल 11 PM, यानी कि आप अगर दिन में हैवी मोटर जो व्हीकल्स है वो चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुबह 7 से लेकर आप शाम के 11 बजे तक आराम से जा सकते हैं। I mean, सुबह 6 से भी आपको पता होना चाहिए कि आज अमरनाथ जी यात्रा की प्रिपरेशन चल रही है एंड बस 2 दिन के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा

स्टार्ट होने जा रही है, उसके चलते प्रिपरेशंस चल रही है. सो अलाउ नहीं किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स को आफ्टर 7 PM शाम के, और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको 11 बजे के बाद परमिशन नहीं मिलती. बट 11 बजे तक वो चल सकती है, आप आराम से जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान, स्पेशली इस मोमेंट पर अभी बहुत सारी ये चीज़ें आ रही हैं. बहुत सारे लोगों के सवाल है कि क्या हमें लोग किया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. लोग ठीक है, दिन में आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अनटिल 11 PM आप आराम से जा सकते हैं, और 11 PM के बाद आपको अलो नहीं किया जाता है इस रास्ते पे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रश है. श्री अमरनाथ जी यात्रा की प्रिपरेशन चल रही है, तो ज़रूरी ये इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है गाइडलाइंस के मुताबिक कि आप अपना प्लान बनाएं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे. पर फिलहाल के लिए अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आपने जाना है, तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाई है, और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा, एक सही मैसेज हम देते हैं सोसाइटी में. एंड उसके अलावा ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना भी, वो भी हमारा ही फ़ायदा. देखिए कोई नुकसान नहीं है, बट इट्स ऑल हमारा माइंड का गेम कि अगर हम समझे तो ये चीज़ें हमारे लिए है, और हमें अपना ख्याल रखना उसके लिए. मैं किसी की वो कहते हैं ना कि कोई अवेयर क्यों करे, हम खुद से जिम्मेदार बने, जिम्मेदार शहरी बने, और इस चीज़ का सबूत है. बाकी आप कितना इंतज़ार करें कि बारिश हो, और फिर से लोग बोले कि भैया जी क्या ही मौसम है, और औसम है, औसम है. पर गर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बच्चे भी डिमांड कर रहे कि समर वेकेशन हो, पर अभी के लिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना या इन चीज़ों को बढ़ाना, रूमर्स को बढ़ाना, दैट्स रॉन्ग. अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, जब आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे. देखिए सावन में तो हर किसी का हाल ही होता है कि हाय हाय ये सावन मोरनी क्या, हमें तो बस ये होता है कि दिल करता है, दिल खुश होता है कि बारिश हो रही है, और उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है. फिलहाल के लिए आप बताइए कि आप इतने एक्साइटेड है कि मौसम से एक करवट जब लेता है तो काफ़ी अच्छा लगता है. मुझे बताइए शो कैसा बन जाए. 8899-0494 पर आप कॉल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, और हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर का हिस्सा बन सकते हैं.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harche Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं आपकी और अपनी फीलिंग समझ चुकी हूँ और इसलिए आ गई हूँ लेके शो हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। शो शुरू हो चुका है और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी, कुछ फंकी। सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, आते आते ही फ्रेश शो शुरू करने के बाद हमारी एक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है कि हम बात करते हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं स्टोरीज, लिप सिंकिंग डांस रील्स, और लोग किन चटपटे गानों पर नाच और थिरक रहे हैं। और आज का एक गाना ये 2021 से है। दिस इज़ अ हरियाणवी सॉन्ग एंड ऑनेस्टली सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कुछ भी ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि दिस इज जस्ट अबाउट द वाइब।

यूजुअल सॉन्ग बट अ रियलिटी कि भाई ये क्लिप काफी वायरल हो रही है और काफी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, बट एक्चुअली यही होता है। अगर किसी का बेटा अपनी मां को छोड़ के अपनी महबूबा के पीछे जा रहा है, दैट इज नॉट द महबूबाज़ फॉल्ट, दैट इज द लड़का's, उनकी अपनी पर्सनालिटी है भाई, वो यही करना चाहते हैं। और अब आप बताइए कि आपने कभी ऐसी कहानी अपने आसपास नोटिस की है? 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक जी, शो हंगामा हॉट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे। देखिए, हंगामा पे ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक, और हर दिन लगभग हम गेम ऑन यानी कि स्पोर्ट्स के अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। बट अभी जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू द अपडेट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कम्यूट थ्रू द रेलवे लिंक ऑफ कश्मीर यानी कि बारामूला, बड़गाम, बानिहाल, संगलगन एंड अब तो जम्मू तक भी। तो आज की बात करें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेशन, टेक्निकल जो भी मैनेजमेंट होता है वो चल रहा था, वंदे भारत हो या लोकल रेलवे लिंक ट्रेन्स हो। और ये भी बोला जा रहा है कि अभी और भी अपडेट्स आएंगे, जो ऑफिशियल रेलवे इंडियन ऐप है दैट इज़ रेल वन, जहाँ पे आपको सर्च जो भी ट्रेन सर्च होता है वो आपको मिल सकता है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन, कौन सी ट्रेन एग्जैक्टली कहाँ है, वो सब आपको पता चलता है ऑन द ऑफिशियल ऐप रेल वन पे। ऑनेस्टली जब भी ट्रेन की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग ट्रेन के साथ ना बहुत सारी वो इमोशंस जुड़े होते हैं, एंड व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेन्स और इमोशंस का क्या कनेक्शन है?

असरा बिल्कुल है। जब हम सफर कर रहे होते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन योर म्यूजिक कि आपका सफर कैसा जाएगा। अगर आपको एक बहुत ही हसीन सा, बहुत ही एक रोमांटिसाइजिंग शायर आना चाहिए तो यू कैन लिसन टू गजल्स, दे डेफिनेटली सॉन्ग्स इन ट्रेवलिंग स्पेशली ट्रेन से इट मैटर्स अ लॉट। बट हमारे यहाँ सैड नहीं होता कोई, दैट इज डिस्पॉसिबल।

मैं वॉज नॉट सुनता रही रेडियो सुना 90.4 FM. और म्यूजिक और ट्रेन का क्या रिलेशन है, वो वैसा ही है, इतना खूबसूरत, इतना एकदम वो अटूट बंधन है और वैसा ही रिश्ता रेडियो सुनार का म्यूजिक के साथ है. तो बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: All my people just be rolling up on this spot.

जी हाँ, भागम भाग तो हर किसी जगह है और एक ऐसी दुनिया जो नॉर्मल दुनिया से काफी अलग है। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड। एक बॉलीवुड कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है और वहाँ ऐसे सपने पूरे होते हैं बहुत सारे लोगों के, और कुछ लोगों को वो सपने बिल्कुल ही उधार में मिलते हैं और बिल्कुल कुछ किए बगैर ही मिल जाते हैं, जिन्हें हम नेपो किड्स कहते हैं। और क्या सच में नेपो किड्स टैलेंटेड होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, और ये जो भागम भाग जो रेस है सच में टैलेंट की है या सिर्फ कनेक्शंस की है? So basically, आज का टॉपिक इज अबाउट द ड्रीम वर्ल्ड फॉर इंडियन पीपल, दैट इज बॉलीवुड। एंड नेपोटिज्म का क्या सीन है वहाँ, और आउटसाइडर्स से कैसे बिहेव किया जाता है, और जो भी टैलेंट है उसके बारे में बात होगी, लोग क्या सोचते हैं और बॉलीवुड की इस रेस के बारे में। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Radio Chinar. Three songs.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harsh Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे।

0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम.
1: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: होगा?
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Beats with Archie Diva on your radio channel 90.4 FM.

0: बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना दिल की बात साहिल के साथ, Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

ओके, तुम आ रही हो? मैं जाऊं। लगता रूम में रह गई।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ

और सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Radio.
1: Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: दिल को
3: करार आ जाए
0: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें।

0: उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: モニーカ
1: ー。そうわけや。でこ。

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे, लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
2: पांच
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा आह जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहे जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोह

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।